0: He aha te wā. Ko te whitu karaka I te pō. It's 7 p.m. Today is Tuesday, or in te reo Māori, Rātū. Sometimes you'll hear the word Tūrei, but that's a transliteration of Tuesday. The correct kupu or word is Rātū. Give it a try. Rātū.
1: और इस सुहाने सफर में मैं रहूंगा आपके साथ विद योर ओन शो मुसाफिर हूँ यारो, अ प्रोग्राम फॉर ऑल दोज लवली पीपल हु आर अवे फ्रॉम देयर होम्स. लेट्स टॉक अबाउट यू एंड योर फेवरेट म्यूजिक विद योर होस्ट जिमी, एवरी वेंसडे 7 p.m. ऑन फ्री FM 89.0.
2: You're listening to Free FM 89.0.